थक आए कर बंधना रखबार थक पर्यो प्रभु दरबार थक आए प्रभु की शाम चार कुंठ दह विष परमे जोन अनेक बिखे परम आयो आए अनेक जन्म परम शरणी लख चौरासी जुना परम दे पाशाह तुहारे द्वारे आए हैं आए अनेक जन्म।

अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस ओहियो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो।

कतहु सुचे तुह के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी, कतहु सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। कतहु

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आओ। ये पहल तू करनी है। प्यार असा देना है, लेना नहीं। देवे तो ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए? ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी, भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहूं भय किन्नर पिशाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कऊ हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होए के पुराण को पढ़त मत कतहूं को

कऊ देवतान के दीवान में विराजमान, कऊ दानवान को गुमान मत देत हो। कऊ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

सूरज में सस में नब में जय हेरो तहां चित लाए तहाई। पावक में अर पवन हूं मैं पृथ्वी तल में सो कहाने जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक

दानी अकल ना कर, क्योंकि मैं स्टेज ते बैठा कथा कहर ना बने तां परहेज नाल दस रहे हैं। तो अपने को भी लेना लगी पी नकली दी, दो चार ते रोज एहो जे केस आंदे है। बाबा जी हजूर साहब जाना कराया ते सतनाम भला हो जाए, वो तेन दो महीने पहले दे दिता जे हजूर साहब का किराया। यो आया मां जी, कुछ होर बंदियां ने कहा सी साडी मुंदरी चढ़ाना साडा चढ़ाना, उहदे पिछे मैनूं जाना पै रिहा। पता नहीं हुण कईआं को की कुछ लिया सतनाम नकली। कार्ड आ जाए ब्याह है जी मदद करो, असि फिर बाबे दे हैं खुल के कही गए तू कार्ड ले मदद ली गया तू। हाँ जी ब्याह है बच्ची का ब्याह है, उसी आप कथा की थी पैर सेवा कर ली। फिर कार्ड फड़ के कही दा कि सच दस जिवें साडे कोल कार्ड लैके आए, किन्नियां संस्थावां कोल कार्ड लैके मदद मंगणगे। जे सच दसेंगा तो 1300 रुपया ही, जे नहीं सच दसेंगा फिर कई बार सेवा नहीं करनी। कहिंदा जी ये 13वीं 14वीं संस्था है सतनाम। मैं कहा तू तो फिर धी दे व्याह नूं व्यापार बना ले, इत्थों भी लै लो उत्थों भी लै लो उत्थों भी लै लो उत्थों भी लै लो, ये तुसीं वेखणा है नकली भी है। वाकई जेड़ा कोई गुरसिख है नाम जपण वाला है, आर्थिक पक्षों कमजोर है, ओदी बच्ची दा व्याह है, एक ते जरूर जा भावे 10 मिनट लई जा, तेरे जान नालों दा माण वधेगा। एक ओनू 4 गुणा सगन भावे लिफाफे च दे आ इसे बहाने नाल। एक इस दुनिया की मैं गल नहीं कर रहा, ये गुरु नानक वेले का इतिहास फरोलो ना, दो भरा सुनते हो ना सूरज प्रकाश शिया गजन, दोनों भाई आए सतगुर की शरण आई, दोवें शिया गजन विआह सी ना शिये की कुड़ी का, वो बरात जदों आई सी ते उन्होंने आंदियां कहता जी बरात 7 दिन 7 रातां रुकेगी, क्या कि नहीं रवाज हुंदा सी बरातां 2-2 दिन रुकदियां सी 2-2 रातां, हुण ते रवाज बदलदे जा। उन्हां कहा 7 दिन ते उन्हूं फिक्र लग गया सी कि आम चारा सिख कहिंदे जिन्ना लाका सी फिर उन्हें हर कोई अपने घरों, क्यों दोवें नाम जपण वाले सी आखो सतनाम करन, 7 दिन 7 रातां पढ़ो साखी। कहिंदे पदार्थ वंडींदे रहे ने, बरात छकदी रही संगत छकदी रही, तोट नहीं आई संगत बोड़ गई आखो सतनाम।

अचानक राजे नु जाग होई। राजे ने की तके रानी वाला पलंग खाली पे आई साहब आई गुरदास जी लिख दे रानी वाला पलंग खाली है। थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी और जिस वेले राणी नू राजे ने नहीं तकिया तो भाई साहब जी लिखते हैं राजे दे मन च बड़ी है। अद्धी रात का समय राणी किधर चली। राजा उठिया महल दे अंदर राणी नू लभण लग गए। सारे कमरे वेखे पर राणी दिस ना भी मन विच वरत गई है। तो प्यारी सास संगत राजे दे मन विच राणी दे मतलब चंगे ख्याल भी आउण लगे मंदे भी आउण लगे। राणी दा मेरे नाल प्यार तो बड़ा है पर अधी राती राणी दा महल विचों है हाजिर होना ए तां मैनूं धोखा दिंदी। इन्हां सोचां ते दलीलां राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया नींद आ गई। दिन चढ़िया जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया राणी अपने पलंग ते लेटी हुई। राजे ने आवाज दित्ती राणीए उठ। राणी उठी राजन हुक्म करो। राजे ने पहला सवाल किया राणी ते कि राणीए सच दस तू राती किथे गई से। अधी रात तू गैर हाजिर सी किथे गई सी। राणी सोचन लगी जे मैं सच दसदी हां तां जिथे मैं रोज जांदी हां हो सकदा है राजा रुकावट पा दे। तो राणी रोज किथे जांदी सी। आई साहब जी लिखदे साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरु। रोज सत्संग भी जांदी सी महापुरुषां दी संगत रात नूं जांदी सी। रोज डेली नितनेम बनिया होया सी चाहे मीं होवे चाहे हनेरी कैसा भी वैदर क्यों ना होवे राणी तारा रोज नितनेम नाल जांदी सी। सोचिया जी सच बोलदी तां हो सकदा है राजा सत्संग तों रोक देवे पर मेरे ते प्राणा दा आधार है सत्संग। मेरे जीवन दा निशाना है गुरु दी बाणी। रोटी मिले चाहे ना मिले पर मैं सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता।

सारी संगत रुकी, लंगर तैयार होया। एक पासे कीर्तन हो रहे है, एक पासे लंगर पक रहे है। उन्हां सिखां ने इस राजकुमार वास्ते खिचड़ी बनाई, जिदे विच देसी घ्यो पा के इनू खाण वास्ते दिती। कईयां दिनां दा भुखा सी, इह खिचड़ी खा रहे है। सारी संगत इहदे दुआले बैठी है, इह सारिआं दे मूंह वल देखदा है। सारिआं दे मूंह ते इसनूं प्यार नजर आया, अखां विच अपनापन नजर आया। सारे इहदे कोल बैठे ने कि किसे तरह असीं इहनूं खुश करिए, इहदी खुशी प्राप्त करिए, इह दुखी ना दिखे। खिचड़ी खांदा इह राजकुमार रोण लग पिया। इहनूं रोंदा देखिआ तां सिखां ने पुछिआ, ऐ युवराज की गल है, तेनूं किसे ने कुछ कहिआ, तू रोण लग पिआ। ए राजकुमार रोंदा होया कहण लगा, नहीं, रोना इस करके आ गया, एक पासे मेरा सक्का चाचा जिन्हें राज बदले सब कुछ खत्म कर देता, और एक पासे तुसी गुरु नानक देव सिख जिन्हां नाल मेरा कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। ए तुहाडा प्यार देख के मेरी अखां विच अथरू आ गए। ए सुन के उन्हां संगतां ने कहा, ऐ युवराज ए ते असीं हां, तू चल के देख

और बाणी सुनाई जिथे एदे तन दा कोड़ कटिया गया मन दा भी कोड़ कटिया गया। भाई बाणे दे चरण पकड़ दे मेरे लिए तां तू रब बन के आए जिसने मेरा परलोक भी ते लोक भी सवार दिता है। मेरा क्या जीवन सी जे तू ना मिलदा पता नहीं की हाल होंदा। हुण कृपा कर जिस गुरु ने तेरियां चोलियां भरिया हन उस गुरु दे मैनू भी दीदार करा दे। मेरियां अखां तरस दियां हन मेरा भी जीवन सफल कर दे। भाई पाने ने जदों इस साकत पुरुष दा प्यार वेख्या समझ गए कि इसकी सुती हुई सुरत जाग उठी है। इसने सच नूं पछाण लिया तां अलाहाबाद तो फिर श्री हरिमंदर साहब विखे अकाल तखत साहब विखे धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह मीरी पीरी दे मालक विराजमान हन। संगतां जुड़िया हुई हन। भाई पाना अते ए पुरश आके जदों चरणा ते नमस्कार कीती नैना दे जल नाल हजूर दे चरण धो देते। ज्यों ज्यों चरणा नूं लिपटदा अंदर दा शीशा साफ हो रहे। हजूर ने बख्शिश दे घर विच आके आख्या जाओ वही तुसी निहाल निहाल निहाल होयो। ता इस नूं लंगर दी सेवा दे दित्ती और सारा जीवन ए पुरख लंगर दी सेवा करदिया गुरु की खुशियां मानदिया अपना लोक परलोक सवार गया। तो हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हैं भाई पुन दान जो बीज दे जेड़े हंकार करके बीज दिया ओ तां धर्म राज कोल जाने ते जेड़े तन मन धन गुरु का समझ के बीज बो रहे हैं ओ फिर गुरु कदे उन्हां नूं धर्म राज दे वस नहीं पावेगा। ओ अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणां विच लीन।

लीला चलत वखाणदा अंतर जामी ठाकुर पावे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भगत जयदेव बारे उपदेश करते हैं, जिस तरह के आप कल दे दीवान विच विचार कर रहे सां, जयदेव नामा बिप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार। जयदेव त्याग्यो अहंगमेव, नाई उदर्यो सैन से। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो संसार ते कि कैसे गुरु हन, जिन्ना ने अपनी गोद दे विच हर धर्म हर वर्ण दे भगतां नूं अपनी गोद विच बिठाया, ना इत्थे कोई जात पात दा सवाल, ना ऊच नीच दा। इत्थे इक्को ही उपदेश है, सबे सांझी वाल सदाएन, कोई ना दिसे बहरा जीव। इत्थे कोई बेगाना नहीं, यह वखरी गल है। अगर साड़ी सोच किसे नूं बेगाना समझदी, गुरु की नजर विच कोई बेगाना नहीं। भगत जयदेव केंदली पिंड विच पैदा होए, जिस तरह के कल आपां विचार कीती, छोटी उम्र विच माता पिता मर गए, माता पिता दे चलाणी दा मन ते बह बड़ा गहरा असर होया, माता पिता दे चलाणी दा मन ते गहरा असर होया, छोटी उम्र तो ही वैराग लग गया। माता पिता दी याद विच गीत गाया करदे सन, पर माता पिता दा एहो ही वैराग हौली हौली प्रभु दा वैराग बन गया। फिर इन्हां दे चाचे ने तोखे दे नाल इन्हां दी जायदाद अपने नाम लिखाणी चाही, पर इन्हां दे चाचे दा ही घर सड़ गया। फिर भगत जयदेव अपना घर बार चाचे नूं दे के जगन्नाथपुरी वल चल पए। रस्ते विच जद बेहोश होके डिगे तां कृष्ण जी महाराज ग्वाले दा रूप धार के आए, भगत नूं दुध पियाया, होश विच लियांदा। भगत जी जगन्नाथपुरी दे अस्थान ते पहुंचे, इत्थे भगत जी दी बड़ी

गोबिंद ग्रंथ लिखना शुरू किया। ये जड़ा गीत गोबिंद ग्रंथ है, आज भी इस दे भजन जगन्नाथपुरी के मंदिरों में बड़ी श्रद्धा के नाल गाए जाते हैं। गीत गोबिंद ग्रंथ लिखते हैं, उस प्रभु के गुण गाते हैं। इस गल का जिक्र भाई गुरदास जी ने अपनी पौड़ी में इस तरह बयान किया। आओ जिन्हें माई भाई बैठे हो, एक बारी सारे करो रसना पूरी।

इतना रस है ते भगत जयदेव जी दे प्यार विच कितना का रस होवेगा। आखो सतनाम श्री वाह। गीत गोबिंद ग्रंथ लिखना शुरू किया, सारा ग्रंथ लिखा गया, पर अखीर ते आके एक श्लोक बाकी रह गया। बड़ी कोशिश की पर आखिरी जिहड़ियां लाइनां ने, आखिरी श्लोक है, ये उतरदा नहीं। हुण जदों तक आखिरी श्लोक ना लिखिया जाए ग्रंथ पूरा नहीं होता। बड़ी कोशिश की पर कुछ भी सुझदा नहीं। तां भगत जयदेव ने अपनी घरवाली नूं कहा, पद्मा एक श्लोक रह गया पर पता नहीं की गल है, कोई अक्षर याद ही नहीं आता। ते जदों तक आखिरी श्लोक ना लिखा ग्रंथ पूरा नहीं होता। तू इस तरह कर, तू प्रशादा पका, भोजन तैयार कर, मैं जरा नदी ते इशनान कर आवां। इशनान करके आवांगा, थोड़ा दिमाग ताजा हो जाएगा, ते हो सकता है प्रभु दी कृपा होवे ते आखिरी श्लोक चेते आ जावे। पर ना मोढ़े ते मारे है भगत जयदेव, इशनान करन वास्ते नदी वाल चल पे हन। पर सात संगत दूसरे पासे भाई गुरुदास जी बयान करते हैं, लीला चलत वखाण दा अंतर जामी ठाकुर पावे। वो जिहड़ा ठाकुर है वाहिगुरु, वो अंतर जामी, वो सारा कुछ जानता है कि भगत मेरी सिफत विच ग्रंथ पिया लिखता है। आखिरी श्लोक इनू याद नहीं आ रहा, भगत दे मेरा ही है, जे इनू याद नहीं आता तो फिर मैं ही चला जाना। आखो सतनाम श्री वाह। भगत जी घरों बाहर गए ता भगवान ने आप भगत जयदेव का रूप धारे है, उसे तरह परना मुंडे ते मारे है ते घर आ गए। पद्मा हैरान होके पूछ दी, स्वामी जी तुसी ते हुणे इशनान करन गए सी वापस आ गए, ते ओ भगवान सतनाम श्री वाहिगुरु। सात संगत शब्द पढ़ते हैं ना, करो सारे रसना पवित्र, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। अपने भगतां दे काम वो आप करदा है, ते भगतां नूं उहदे कोल जाण दी भी लोड़ नहीं, आपे चल के आ जांदा है। शब्द है सारे जपो, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जह जह काज किरत सेवक की, तहां तहां उठतावे। उठ के वो आप आ जांदा है। ग्रंथ चुकया, ग्रंथ सामने रखया, और साध संगत अपने हथां दे नाल गीत गोबिंद ग्रंथ दा उस प्रभु ने आप श्लोक लिखिया, ग्रंथ नु पूरा कीता। ग्रंथ पूरा करके लवेट के एक पासे रखिया, ते फिर बड़े प्यार नाल कहंदे ने, पद्मा बड़ी भुख लगी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु।
कितना प्यार, कितना अपनापन है प्रभु विच। तन हन ओदे भगत जिन्हां नूं प्यार नसीब होंदा है। साड़ी ते सारी उम्र नक्कां रगड़ रगड़ के गुजर जांदी, ना जीवन बदलदा है ना कुछ मिलदा है। क्यों मत्था भी टेकदे आं, कुछ भला कर लैने आं कुछ बुरा कर लैने, जिन्नी नेकी कीती उन्नी बुरियाई कर ली, उत्थे दे उत्थे ही रह गए, ना अग्गा सौरे आ ना जीवन बदले आ। ते जिन्ना ने बुराइयां छड़ दित्तियां केवल नेकियां नूं ही अपनाया ते उन्ना दे जीवन है। ओ पद्मा किन्नी भागां वाली है जिसनु प्रभु आप कह रहे हैं, पद्मा बड़ी भुख लगी है, लिया मैनू भोजन खवा, मैनू प्रशादा छका। आओ एक बारी सारे

अखर पढ़ प्रतीत कर, होय विस्माद ना अंग समावे, वेखे जाए उजाड़ विच, बिरख एक अचरज सुहावे, गीत गोबिंद संपूर्णो पत पत लिखिया, अंत ना पावे भगत हेत प्रगास कर, होय दयाल मिल गल लावे, संत अनंत ना भेद गणावे। भाई गुरदास जी बयान करते हैं कि संतां विच उस अनंत परमात्मा विच कोई फर्क नहीं, पर यह भी याद रखना संत ओ जिन्हां दे जीवन भगत जयदेव वर्गे हैं।

आकार नाना प्रकार। श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं, जोग भोग नहीं वेद जगत भगत जाहे

हम बन बन जाओ और नैया कारण कारण कमन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जो जन्म तुम्हारे लेके चरदास आसन।

और सत्कार योग गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी साध संगत अज सचखंड निवासी संत बाबा ईशर सिंह नानक सर वाले महापुरश आप जी उन्हां दी बरसी मना रहे हो। साधुआं दी याद विच सदा मेले लग्या करदे हन। ए बख्शियां रूहां हुंदियां हन। थोड़ा समा तुहाडे दर्शन करने ने ध्यान दे के सुनियो। जेडे सुन लैणगे ओह भी साध संगत पछताउणगे, जेडे ना सुनणगे ओह भी पछताउणगे। विचार ही करनी है दुनिया दे विच महापुरशां दा आउणा। साध संगत जिवें लोहा लोहे तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं हुंदा। बंतर दा फर्क हुंदा, लोहा भी लोहा हुंदा, लोहे तों बणियां चीजां भी लोहा हुंदियां ने। जिवें लक्कड़ तों बणियां चीजां ते लक्कड़ विच कोई फर्क नहीं होया करदा, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें पाणी ते पाणी तों बणियां लहरां विच फर्क नहीं हुंदा। प्रेमियो समुंदर लहर मारदा, छल मारदा समुंदर दी, छल फिर समुंदर दे विच ही खत्म हो जांदी है। जिवें समुंदर ते समुंदर दीआं लहरां विच कोई फर्क नहीं, वेखण दा फर्क हुंदा। जिवें सोना ते सोने तों बणियां चीजां विच कोई फर्क नहीं होया करदा, बंतर दा फर्क हुंदा, वेखण दा फर्क हुंदा। इवें बाबा ईशर सिंह ते अकाल पुरख च कोई फर्क नहीं सी, वेखण दा ही फर्क सी। प्रेमियो अज जिन्हां संतां दी बरसी मना रहे हो, याद मना रहे, बरसी तां असीं शरीर करके मनाउने आ भई संत चले गए। अग्ञानी पुरशां नूं आउंदा भी संत चले गए, ज्ञान नूं इन्ने साल हो गए। अज दास अखबार च पढ़ रहा सी 25 साल हो गए शायद, 25वीं बरसी है। कौन कहिंदा महापुरश चले गए? महापुरश तां हाजर नाजर बैठे ने। बुलिया रब तैथों वख नहीं पर वेखण वाली अख नहीं। हुण अन्ने नूं किहड़ा आखे भी, जे अन्ने नूं कहीए भी दुनिया बड़ी सोहणी है, अन्ना जे ना मन्ने, अन्ना कहे दुनिया तां सोहणी है ही नहीं, उत्थे की दलील देईए? दुनिया ते फुल ते बड़े ने पर गुलाब दे नाल दी सुगंधी नहीं मिलदी। संसार ते महापुरश ते बड़े ने पर बाबा आनंद सिंह वर्गे बाबा, इस तों अगे चलो बाबा महाहरनाम सिंह, पुछो मंडी वाले महापुरश, उन्हां वर्गे बाबा ईशर सिंह जी, नानसर वाले महापुरश, इन्हां वर्गे महापुरशां दा मिलना साध संगत जी बड़ी मुश्किल है। दुनिया ते लकड़ां ते बथेरियां ने पर बामन चंदन दी लकड़ी दा मिलना मुश्किल है। संसार ते पाणी ते बड़े ने पर गंगा जल दी महानता अपनी वखरी है। सारे पड़ो ना कोई होया ते ना किसे होना, मेरे प्रीतम वर्गा कोई रसना रह ना जाए। तेरे जिया नहीं जग

अगर कोई बनारस जाके तप करे उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे अग्नि विच अपना शरीर साड़ देवे काया

बदलावन दे। मैं ते कर्मैया दा नाम जपदा ते ओदे बदले सारे देवी देवते छड़ दिते ने। इस करके ऐ भाई जिस अकाल पुरख ने